0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभ

0: Raio Rádio, todo é tempo.
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Solo FM studio time.
3: It's 8 AM. बिहानको 8 बजे.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु.
4: यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज. अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम बदलिदो नेपाल.

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: साउंड चेक सोलू एफएम इन स्टूडियो टाइम
2: 10 AM बिहार को 10 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

न छल हुँदैन धारण के हुन्छ त मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सीत मन सी

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चौकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 0375902222 98528002222 98482030।

0: टोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंदू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेतना
1: का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्तेल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842803000

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 2 PM न्यू सपोर्ट बी बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: Raio Rádio Solo FM Solo FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम लोग अभियान
1: साउंड चेक Solo FM is studio time.
2: It's 4 p.m. अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: लागू औषद मुक्त समाज निर्माण का लागि जिला प्रशासन कार्यालय सोलु खुम्बु र सोलु एफएम को संयुक्त प्रयास में जनहित में जारी संदेश
1: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बिल विशोक लिने र दिने गरौं कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना नदेऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याचकी नीति गुणस्तर यकिन गरे मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु वा सेवा को प्रयोग कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौ निष्पक्ष तथा तथ्यपरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौं भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगी में स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Solu FM Studio Time
4: It's 7 PM Saturday or Saturday
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

0: মেধা ঘুরা প্রশ্ন বিচার উজালো রেডিও নেটওয়ার্ক
1: कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यो कार्यक्रम उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ

0: नागरिकता आयता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदली सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाह होने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को लगी नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को लगी नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुखसंग सोझे संपर्क राख सकूने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर